आज विजय हुआ। दूधा के भाई बुखार उठा तुम्हे कोने भाई, दूधा के ओ बुखार उठा तुम्हे कोने भाई।